0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोज़ो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रासिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लीजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: You are listening 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
8: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन दैट प्लेज
5: फुट टैपिंग म्यूजिक.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजान 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक.
7: फजान 97.1 एफएम.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए स्लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़।
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station. That plays
12: foot tapping music.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: Back to back music.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: 97.1 FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।
1: मोटा सा दूंगा

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर सेइंग, वी आर

देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: Bigger and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
4: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
3: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
4: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
3: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
4: थक गया सोनिए नहीं सुन के तेरे लारियां नो
3: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
7: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
7: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
7: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodpro Road Nottingham NG35QS।
7: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
6: टेस्ट भी वाइब भी।
8: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
8: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
9: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
8: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
8: Park Foods, जो नाम है मायार का।
0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
11: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back, hip hop, music.

97.1 FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

जी तो लिसनर्स, वेलकम बैक। रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए। सामिन जी वकार, खूबसूरत सा दिन है, जुमात मुबारक का बाबरकत वक्त है, खूबसूरती नशीद आपके सामने थी, आपकी कोशिश गुजार थी और आप खूबसूरत से सूफियाना कलाम के ट्रैक्स भी इंजॉय कर रहे थे। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में, यानी सुबह खैर नॉटिंघम में आप लोगों को स्वागत करते हुए एक बार फिर से 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो यानी ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम से आपका मेज़बान नासिर खान।

डियर लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं, ये इंसान का जो बेसिक जहनीयत है या बेसिक जो उसकी रूह है, जो उसको हमेशा बेतरतीब रखती है, जिस्म तो जाहिर सी तौर पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस ऊपर वाले की ज़ात ने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, असेंबल किया है, एक एक चीज़ को बड़ी सोच समझने के साथ उस मुसव्वर ने कमाल अंदाज में उसको मैनेज किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हमेशा इंसान को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखती हैं, उकसाती हैं, वो होते हैं उसके अल्फाज। अल्फाज इंसान को कैसे मुंतजिम करते हैं, अल्फाज इंसान को डिसिप्लिन कैसे करते हैं, क्या जहनीत होती है जो लोग अच्छे और बुरे अल्फाज का चुनाव करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, और अल्फाज के चुनाव में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है, वो होती है इंसान की वो जहनीत जो उसके दिमाग के पसे पर्दा यानी उसके कॉन्शियस में, उसके ज़मीर में हमेशा मूव करती है। बज़ाहिर अगर आप इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखें, इंसान को ये कोशिश करें कि ऊपर वाले ने हर चीज़ उसको दी है, खूबसूरत चेहरा दिया, खूबसूरत जिस्म दिया, अच्छी डील डोल दी, अच्छे तरीके से जिस्म को मैनेज करना सिखाया, बॉडी लैंग्वेज अच्छी, हर चीज़ अच्छी, ऊपर वाले ने बहुत सारा पैसा भी दिया, काविशें भी दी, मेहनत भी दी, अलगर्ज ऊपर वाले ने हर चीज़ उसको दी, लेकिन जो एक चीज़ उसके पास नहीं होती, जो मेन टॉपिक जो कभी कभी बीच में से मिस हो सकता है, वो होते हैं उसके अल्फाज। जिन अल्फाज को वो चुनता ज़रूर है अपने मकसद के लिए, वो खामोश रह कर भी बहुत सारी बातें कह देता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि खामोशी की बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा शोर होता है खामोशी में, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो खामोश रह के बहुत सारी ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं, लोगों को कह देते हैं, जिनके लोग वहमो गुमान में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो मेन काविश होती है, उनकी जो मेन कोशिश होती है, वो कोशिश उनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है, सबसे जो पहली होती है, वो ये होती है कि वो लोग किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आपके अल्फाज किसी का दिल दुखा रहे हैं, आपके अल्फाज किसी को बुरा भला कह रहे हैं ज़ाहिरन तौर पे, तब भी बहुत अजीब सी एक सिचुएशन बनती है अगर वो अल्फाज आपके अपने नहीं हैं। कभी कभी इंसान होता है ना कि कानों के कच्चे लोग होते हैं, एक दूसरे की बात सुन के उस पर अमल दरामद भी करना शुरू होते हैं, और कामिल यकीन के साथ, अकीदे के साथ, ताकीद के साथ लोगों को भी उसकी दावत देते हैं कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अक्सर इंसान के पास जो मेन चुननी वाली चीज़ें होती हैं, जिनको वो खुद चुनता है, जिनको वो खुद समझता है, जिनको वो खुद परवान चढ़ाता है, वो जो मेन चीज़ें उसके पास रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस उसका अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद, वहदानियत पे एतमाद और वहदानियत पे एतकाद, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके इंसान अपनी सारी ज़िंदगी चलता है, और अगर इनका सही इस्तेमाल, उस फोकस का, उस सोच का सही इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इंसान के पास अच्छे अल्फाज का ज़खीरा आता है, और अच्छे अल्फाज ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जो इंसान के पास हमेशा रहते हैं।

और इंसान अगर सामीन बात करें ना खूबसूरत रिश्तों की, तो खूबसूरत रिश्ते बनते कैसे हैं? बेसिकली खूबसूरत रिश्ते उनमें जो एहसास होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब एहसास का थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं सामीन अपने नाकुस इल्म के मुताबिक, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो चीज़ें ज़ाहरी तौर पर इंसान को ये एहसास दिलाती हैं इस चीज़ का कि अब जो तुम कर रहे हो वो गलत है, अब जो तुमने किया वो ठीक है। अब इंसान के पास थोड़ी सी काविश करने के बाद ना, कहते हैं रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा होता है। आपसे हमदर्दी हर कोई कर लेगा, अब ये चीज़ डिफरेंट है हमदर्दी और एहसास की। एहसास इंसान के अंदर तब होता है जब वो अच्छे अल्फाज का चुनाव करता है, जब वो अच्छे अल्फाज का एहसास दिलाता है लोगों को। अब एहसास बेसिकली आपके रवैये से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, इन चीज़ों से नज़र बहुत कम आता है। लोग मोहताज होते हैं सुनने के, लोग मोहताज होते हैं कि आपके मुंह से निकली हुई चीज़ को थोड़ा सा एक पर देखें ज़रूर कि यार किसने क्या बात कही है। कभी भी ऐसे इंसानों की सिफत में नहीं आना चाहिए जिनके अल्फाज बेलगाम होते हैं। कहते हैं ना कि आपके अल्फाज ही बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आउटलुक, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस चीज़ के साथ मैच भी कर रही है या नहीं। अगर वो मैच नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अल्फाज हैं वो उनका साथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज का साथ उनके साथ नहीं है, मतलब उनको एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं कर पा रहे। फिर इंसान के पास जब अल्लाह ताला की दी हुई ताकतों में से एक ताकत एहसास की होती है, एक ताकत एक फ़र्ज़ एहसास का होता है, जब वो उन फ़राइज़ की कंप्लीट यानी ना पूरी तकमील कर लेता है। अब अगर ज़ाहिर तौर पे देखा जाए, नमाज आप पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात, हज, सारे अरकान इस्लाम के आप पूरे कर लें, फ़राइज़ भी आप पूरे करें, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान से, आपके अल्फाज से किसी के दिल को तकलीफ़ पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अल्फाज इस वक्त उसका इतना ज़रा, इतना बड़ा नुकसान कर चुके हैं कि आपको उसका शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा।

तो समीन यही आज का टॉपिक है हमारा और यही हमारी काविश है कि अगर हम अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और हम सब अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखें अल्फाज के सहारे, तो फिर एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म बता दूं सामिन कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे इस नॉटिंघम शहर की कम्युनिटी में बड़े खूबसूरत दिल के, जैसे कि मैं कहता हूँ प्यारे से लोग, बड़े अच्छे अखलाक के लोग रहते हैं। हर किसी का अखलाक, हर किसी की बातचीत, हर किसी के एहसास एक दूसरे के लिए डिफरेंट है। हालांकि इंसान एक दूसरे के साथ चलता ज़रूर है, अपने आप को मैनेज ज़रूर करता है कि यार मैं देर पा इस बंदे के साथ चलूँ। दिल की अथाह गहराइयों के साथ आप उसके साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काविश करते हैं, कोशिशें करते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि जो लोग आपके सामने मौजूद हैं वो लोग आपके सामने दिखलावा भी ना करें। तो सबसे पहले आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें। यानी अगर आपने किसी को कोई बात कहनी है तो इतने प्यार से, इतने खुलूस से और इतनी ज़बरदस्त तरीके से कहें, खामोशी से। अगला बंदा अगर कोई बहुत कहते हैं ना तेज़ तराज बनता है, या बहुत ज़्यादा हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में होता है कि बहुत ऊंचा बोलना, अब ऊंचा बोलना कभी भी इस बात की अलामत नहीं है कि आपके साथ जो बंदा बात कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब अगर आप अच्छे अल्फाज का चुनाव ऊंची आवाज़ में करेंगे, यानी आपकी आवाज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर भी ये कोई कंपैटिबल चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट नहीं करती। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप अच्छे अल्फाज के साथ साथ अपना रवैया भी तब्दील करेंगे। और एक चीज़ सामीन लिख लीजिए, मेरे एक्सपीरियंस में भी है और सियाने भी ये बात कहते हैं कि जब अच्छे अल्फाज आपके मुँह से निकलते हैं तब आपको ताकत भी मिलती है। फिर आप खुद ब खुद कोशिश करने के बावजूद उन अच्छे अल्फाजों को इस तरह मैनेज कर लेते हैं, इस तरह परख लेते हैं कि वो फिर आपकी जो एक तबीयत है ना, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब भी आप अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे वो अच्छे अल्फाज आपका लहजा भी धीमा रखेंगे और आपको एक खूबसूरत तरीके से अपना मैसेज लोगों में कन्वे करने का हौसला भी दे देंगे। और जब ये चीज़ें इंसान के पास मुख्तलिफ़ एंगल से मिलती हैं ना, फिर एक कामयाब पर्सनैलिटी जन्म लेती है, फिर एक खूबसूरत इंसान बाहर निकलता है। वो खूबसूरत इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को बेहद पसंद आता है, और यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह की ज़ात ने कहा है कि अखलाक बहुत अच्छा है जिनका। सबसे पहले उसमें अच्छे अल्फाज, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल आता है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ समझाते हैं। उनमें से क्या समझाना है कि भाई जो वेजिटेबल हैं उनका सोर्स, उनका जायका बिल्कुल अलग है। आप मीट ले रहे हैं उसका जायका अलग है, दूध पी रहे हैं, अगर जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपके पास ज़ुबान के टेस्ट बड्स नहीं है तो आपके हलक से जब वो नीचे उतरी है तो फिर उसका ना कोई टेस्ट, ना कोई इफेक्टिवनेस। हर चीज़ का असर अंदाज होने का तरीका अलहदा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस हद तक जब वो आपके हलक से नीचे नहीं उतरी। जब आपकी ज़ुबान पर वो चीज़ आ जाती है तब आपको टेस्ट पता चलता है। तो सामीन बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं फिर उनका असर होना या ना होना खत्म हो गया। जब आपके मुंह से अल्फाज निकल गए तो जायका आपने ऑलरेडी चख लिया है। आपको एहसास जरूर होगा कुछ टाइम के बाद कि आपके जो जज्बात थे वो आपके अल्फाज का साथ नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं किया। अब आपके जज्बात जितनी मर्जी एहसास वाले हों, जितनी ज़्यादा उनमें मेहनत हो, जितनी ज़्यादा उसमें हमदर्दी हो, उन एहसासात का, उन जज्बात का कोई फ़ायदा अगले को नहीं पहुंचेगा अगर आपके अल्फाज ठीक नहीं हैं। कोई इंसान भी आपके दिल के अंदर झांक कर, आपके ज़मीर में उतर कर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आपके अल्फाज से ही पता चलेगा कि आपके पास जो अमल है, आपके पास जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके पास जो पर्सनैलिटी है, वो इस काबिल है कि वो लोगों को सुकून, आनंद या लोगों को फ़ायदा दे सके या नहीं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: In your face, all over the place.
8: We're online 24/7. 24/7.
7: You're listening to the hottest internet station.
9: This is Fazana 87.1 FM. Rokomat.

0: Your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are saying. We are

0: सी तो लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे संग इसी तरह से जुड़े रहिए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
4: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करती हूँ डीवा डायलॉग में विद आरजे ज़ैनब फातिमा के साथ। हे तो लिसनर्स, ये सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपने भी हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप हमें 01157100971 इस नंबर के थ्रू बता सकते हैं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं और क्या काम करते करते सुन रहे हैं। जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको खूबसूरत सा आफ्ताब परवीन साहिबा की आवाज़ में वो कलाम। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। तो जैसा कि पूरे हफ्ते के 7 दिनों में से जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पर वो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है। सो बेसिकली ये सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि एक रीसेट बटन है जो कि हमारे पूरे हफ्ते में जहां हम भूल जाते हैं कि हम क्यों इस दुनिया में आए, हमारा पर्पस क्या है, और मगन हो जाते हैं दुनिया की तमाम तरह रंगीनियों में। सो ये जो रीसेट बटन है वो हमारी ज़िंदगी का, जहां हम शोर शराबे में बहुत ही ज़्यादा मगन हो जाते हैं, हमें ये याद करवाता है कि हमारा इस दुनिया में आने का बेसिकली असल मकसद क्या है। सो आपने कभी गौर किया है कि जुम्मा के दिन हवा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आप देखो तो पूरे वीक के सभी डेज़ में जुम्मे का दिन एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दिन है। और मैंने ये भी सुना है कि जुम्मा के दिन अगर आप सच्चे दिल से कोई दुआ करो तो वो दुआ भी ज़रूर कबूल होती है। सो जुम्मा हमें सिखाता है कि चाहे आपका पूरा हफ्ता कैसा भी गुजरा हो, आज का दिन आप सब चीज़ों को, सब कामों को भूल सकते हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हैं, और जो कनेक्शन आपका समहाउ हो चुका है वीक, आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लिसनर, जैसा कि आज हम बात कर रही हैं जुमातुल मुबारक की, सो आज के इस खूबसूरत से बाबरकत से दिन में जहाँ ज़िंदगी आप सबकी भी मेरी भी काफ़ी मसरूफ़ हो चुकी है, लेकिन स्टिल हमें कुछ चीज़ों को हमेशा जहन में रखना चाहिए और हमेशा उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जुमा के दिन कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ आपको स्परिचुअली प्लेयर देंगी बल्कि आपका जो आपके गॉड के साथ एक कनेक्शन जो थोड़ा सा वीक हो चुका है उसे भी बिल्ड करने में हेल्प आउट करेंगी। सो सबसे पहले जुमा के दिन सुरतकाफ लाजमी पढ़ा करें क्योंकि ये आपके एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक नूर का काम करती है और इसे पढ़ने में आपका बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। टोटली 10 से 15 मिनट में आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जहां हम बात कर रही हैं कि हम कौन कौन से काम जो जुमा के दिन कर सकते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, सो सेकंडली हमें चाहिए कि जुमा के दिन हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। इससे आपका दिल भी हल्का होगा और आपको एक बहुत ही अच्छा एहसास महसूस होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट काम जो आपको जुमा के दिन लाजमी करना चाहिए वो ये है कि असर से मगरब के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ जो भी आप दुआ करते हैं वो सच्चे दिल से कबूल होती है। सो आपने कोशिश यही करनी है कि उस वक्त आपने अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए और जितनी भी दुनिया में हर्डल्स चल रही हैं उन सभी के लिए दुआ करनी है, क्योंकि दुआ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और दुआ इबादत का मगज होती है। सो ये छोटे छोटे काम हैं जो आप आज के दिन कर सकते हैं जो आपका गॉड के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छा फील करवाएंगे। लिसनर्स, ये तो हो गए वो तमाम तर अच्छे अच्छे काम जो आपको जुमा के दिन लाजमी करने चाहिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल रहते हैं। अब ज़रा दूसरी साइड चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना। सो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपना एक गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, तो वहाँ इन तमाम तर चीज़ें का ना करना भी बहुत मैटर करता है।
सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको चाहिए कि आज का दिन नहीं बल्कि ये ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि द फर्स्ट थिंग जो आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना। अच्छा, ये हम सभी में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि हम नॉर्मली बात करते करते एक से दो झूठ बोल देते हैं। हम सब यूज़ टू हो चुके हैं इस चीज़ के, हमें फील भी नहीं होता कि जब हम झूठ बोल रहे हैं तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो झूठ बोलना इट्सेल्फ एक बहुत बुरी आदत है, साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक एथिकली भी बहुत गलत बात है कि आप किसी से झूठ बोलें, किसी से कोई ऐसी बात करें जो इन रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सो द फर्स्ट काम जो आपने नहीं करना पूरे वीक वो ये है कि आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, आई नो समटाइम्स हमें ज़रूरत नहीं भी होती लेकिन हम फिर भी झूठ बोल लेते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। सो आपने इस आदत को ख़त्म करना है। सेकेंडली, वो ऐसा काम जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो कि ये वो काम है जो कि आपकी तमाम तर इबादत को, आपकी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो जहां हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से हम नेकी कमाएं, तो वहीं इन तमाम तर पहलुओं के बारे में बात करना भी ज़रूरी है कि जिनसे हम अपनी नेकियों को बचा सकते हैं। सो द सेकेंड थिंग इज़ जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं। हो सकता है कि समटाइम्स आपका हल्का सा हार्श एटीट्यूड किसी दूसरे को हर्ट कर सकता है, किसी की फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ ना करें। हमेशा कोशिश करें कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, घर वाले हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, इसके अलावा सोशल सर्कल हो गया, मैं इन सब की बात नहीं करी। समटाइम्स हम अपने हेल्पर्स की, अपने वर्कर्स की, इन सब के साथ भी थोड़ा सा रूड बिहेव कर लेते हैं, हार्शली पेश आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी बुरा लग सकता है, उनका दिल हर्ट हो सकता है। सो कोशिश यही करनी है कि कभी भी किसी के साथ बुरा एटीट्यूड ना रखें, किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर तो देते हैं लेकिन फिर करने के बाद भूल जाते हैं कि आया हमने ये क्या किया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ रहे स्ट्रॉन्ग, सो ये छोटी छोटी चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। दो चीज़ें तो मैंने डिस्क्राइब कर दी है, थर्ड चीज़ भी आपसे डिस्क्राइब करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा क्योंकि अब 2 घंटे तो हम साथ साथ हैं। सो हम हर तरह के पहलू को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त के लिए एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड चेंज हो और रूह को तस्कीन मिले। सो कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से करेंगे कंटिन्यू।

वेलकम बैक। दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो कि हमारी ना सिर्फ तमाम तर नेकियों को ज़ाया कर देते हैं, बल्कि हमें जितना भी हमने अपना एक अच्छा गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड किया होता है उसे भी वीक कर देते हैं। सो दो काम मैंने आपसे शेयर कर दिए थे। द थर्ड इज़ जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेकेंड कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, और थर्ड कोशिश करनी चाहिए कि हमें फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव होते हैं और गुस्से में आकर किसी को कुछ भी बोल देते हैं। सो आई थिंक सो कि लड़ाई इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, और अगर आप कभी भी किसी के साथ लड़ते हैं तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। सो कोशिश किया करें कि आप कभी भी अपनी एनर्जी, अपना टाइम और डोमेन किसी पर ज़ाया ना करें। समहाउ सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब हमें दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती, या हो नहीं सकता कि दूसरे इंसान को हम हमेशा परफेक्ट लगें। सो कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आपने ये करना है कि नेक्स्ट अगर आपके साथ कोई भी लाइफ सिचुएशन सिनेरियो ऐसा होता है तो आपने कोशिश यही करनी है कि अवॉइड करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा मैंने सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं या किसी पर शाउट करते हैं उनका दिल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। सो इस तरह के ये तीन काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ आज मैंने तीन चीज़ें आपसे शेयर की कि जो आपको करनी चाहिए, वहीं मैंने सोचा कि तीन ऐसी शेयर करती हूँ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

जी तो लिसनर्स, उससे पहले एक खूबसूरत सा कलाम सुन लेते हैं कलाम के उस पार, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी अच्छे अच्छे से ब्यूटी टिप्स। तो मिलते हैं कलाम के उस पार।

वेल लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM का हिस्सा बने रहिए और मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के उस पार।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यार, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को।

0: साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
1: To stay contact, 07-440-016816. Address, 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham, ND72ET.
0: Pishavri Dera.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07-440-36-3063 या 07-421-077-999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: You are playing. Fazan 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को टीवी डायलॉग में खुशामदीद। मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवी डायलॉग, जो कि लगता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। जितने लिसनर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से जब हम वापस आ चुकेंगे तो हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड। और ब्यूटी कहाँ से आती है? ब्यूटी आती है जब आप ब्यूटी टिप्स को अप्लाई करते हैं और रेगुलरली अप्लाई करते हैं। सो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह अपनी सभी डिवाइस के लिए कुछ होममेड DIY मास्क, जो कि ना सिर्फ आपको खूबसूरत बनाएंगे बल्कि आपकी सुंदरता को भी मज़ीद इंक्रीज कर देंगे। सो बेसिकली आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, या जो DIY मास्क मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए हैं, उन सभी डिवास के लिए हैं जिनको इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि उनको एक्नी हो चुकी है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, या समहाउ बाज़ूकात ऐसा होता है कि एक्नी चलो हो जाती है लेकिन एक्नी के फ़ौरन बाद फिर एक्नी स्कार्स रह जाते हैं। सो ये तमाम तर मास्क आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ये ना सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन को कम करेंगे बल्कि ओकेशनल ब्रेकआउट्स को भी, और जो माइल्ड किस्म की डार्कनेस हो जाती है, उन तमाम से चीज़ों को। सो द मोस्ट अफेक्टिव स्किन केयर मास्क वही होते हैं जो कि आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं और आपकी शख्सियत में एक नया निखार पैदा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम एक ऐसे मास्क की जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ठीक है, साथ ही साथ जो डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, उन्हें भी दूर करेगा। सो बेसिकली हमारा जो मास्क है वो है टर्मरिक एंड योगर्ट मास्क। अच्छा, जो योगर्ट है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि जेंटली एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को, और जो टर्मरिक है वो टारगेट करती है डार्क स्पॉट्स को और इन्फ्लेमेशन को। अच्छा, अब आपने इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए 1 टेबलस्पून प्लेन योगर्ट, साथ ही साथ 1.5 टीस्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून रॉ हनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के फौरन बाद इन्हें एक स्मूथ सा बैटर या पेस्ट बना के रख लेना है। अप्लाई करना है फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए, और जैसे ही आपका ये टाइम पीरियड हो जाए कंप्लीट, सो आप इसको नीम गर्म पानी से भी धो सकते हैं या फिर आराम से कॉटन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। जब आप इसको फ्रिक्वेंटली हफ्ते में 1 से 2 मरतबा यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कम हो रहे हैं, और जैसे ही डार्क स्पॉट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली ही स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी।

सो अब आगे बढ़ते हैं अगले मास्क की जानेब। सो अब हमारा जो अगला मास्क है, इट्स कॉल्ड हीलिंग एलोवेरा एंड हनी मास्क, जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्किन डैमेज को रिपेयर करने में। टिश्यूज़ को, ठीक है, स्पीडन अप करता है वाउंड को और रिड्यूस करता है रेडनेस को। सो अगर आपकी स्किन में किसी किस्म का कोई स्कार है या फिर रेडनेस है या कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन है, सो दिस मास्क इज़ फॉर यू। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, सो 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है रॉ हनी एंड साथ ही 1 टेबल स्पून ले लेना है प्योर एलोवेरा जेल। ब्लेंड वेल, स्प्रेड इवन ऑन योर स्किन और इसको छोड़ देना है 10 से लेकर 15 मिनट तक। और जैसे ही ये वक्त हो जाए कंप्लीट, तो आप इसको आराम से रिमूव कर लें। अच्छा, अब आपने इसको कितनी मरतबा इस्तेमाल करना है, सो आपने इसको यूज़ करना है हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, और 2 से 3 मरतबा के बाद आप देखेंगे कि आपकी रेडनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। समटाइम्स होता है ना कि एलर्जी हो जाती है, हल्की सी इरिटेशन होती है या फिर किसी किस्म के कोई भी या चोट वगैरह लग जाती है, चेहरे के ऊपर जख्म आ जाता है, तो ये उन सब के लिए बहुत ही अच्छे से हीलिंग का काम करेगी।

सो अब आगे बढ़ते हैं अगले DIY मास्क की जानिब, जो कि हमारी एक्ने स्किन टोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बेनिफिशियल है और एक्सफोलिएशन का बहुत अच्छे से काम करता है। सो वेल, शेयर करती हूँ आपसे ये मास्क, लेकिन उससे पहले क्यों ना शो में एक अदद खूबसूरत सा कलाम शामिल किया जाए। तो आप बताइए आपको किस तरह के कलाम सुनने हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के थ्रू बता सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आप सभी के लिए, 01157100971। सो मैं वही कलाम शो में शामिल कर दूंगी जो हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं, पर अभी के लिए आप वो कलाम सुने जो कि मैं सुनना चाहती हूँ। सो ये खूबसूरत सा कलाम मेरी नज़रों के सामने से गुजर रहा है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम और कलाम के उस पार वापस से चलेंगे ब्यूटी की दुनिया में।

सो डियर लिसनर्स, आज हम बनाएंगे द स्पाइस किचन में चटपटे से डिलिशियस से मशरूम्स। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मशरूम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाते हैं, या आप इनको खाने के लिए स्पेशल किसी रेस्टोरेंट या फाइव स्टार होटल जाते हैं? सो आपको आज वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अच्छे से मज़ेदार से मशरूम्स घर में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही यमीएस्ट होंगे, डिलिशियस होंगे और आपके टेस्ट बड्स के मुताबिक होंगे। सो सबसे पहले शेयर करती हूँ आपके साथ फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट। सो जी, इनको बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, सबसे पहले हमें चाहिए मशरूम्स 250 ग्राम्स। कोई से भी मशरूम्स आप यूज़ कर सकती हैं, अच्छे से उन्हें क्लीन करके वॉश करके रख लें। नेक्स्ट हमें चाहिए टर्मेरिक पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक हसब ज़रूरत, हसब जायका, लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1 फुल एंड 1.5 टीस्पून। साथ ही साथ हमारा अगला इंग्रेडिएंट है योगर्ट 3 टेबल स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून, आमचूर यानी ड्राई मैंगो पाउडर 1 टीस्पून। इस मैंगो पाउडर से क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टैंगी हो जाएगा, चटपटा सा एक खट्टा सा टेस्ट आएगा, सो इसके लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। वेल, अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप सिंपली लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं विनीगर। सो कोई सा भी जुगाड़ लगाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर इन्ग्रीडियंट को जाकर सुपर मार्केट से परचेज करें। साथ ही साथ हमारा अगला इंग्रेडिएंट है चाट मसाला 1 टीस्पून। अब बात कर लेते हैं अगले इंग्रेडिएंट की। सो इस रेसिपी के लिए हम कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी, बटर भी और ऑलिव ऑयल भी, ठीक है? तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून। क्यूमिन सीड्स शामिल होंगे 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज 2 अदद, अनियन एक बड़े साइज का, टमाटोज 1 से 2 अदद, कैप्सिकम 1.5 कप, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करके कट करके अच्छे से रख लेना है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स 2 टेबल स्पून। अच्छा, कोरिएंडर लीव्स को हम इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए, सो 2 टेबल स्पून से मुराद कि आप इन्हें अच्छे से चॉप करके कट करके रख लें, और उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 2 टेबल स्पून, जिसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है लेमन जूस 1 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप आमचूर यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो विनेगर यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये थे वो सब इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी आज की इस रेसिपी में होंगे इस्तेमाल। सो मैंने आपसे शेयर कर दिए। वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे हो गया है कोई इंग्रेडिएंट मिस, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप 1157100971 उस पर सिंपली मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवा दूँगी। चलिए लिसनर्स, जब तक आप किचन में जाकर ये चीज़ चेक करते हैं कि आया आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं, तब तक के लिए शो में भी वक्त हो रहा है 1 अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो आप जल्दी से अपने तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लीजिए, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो भी देख लीजिए। वैसे मैंने कोशिश यही की है कि मोस्टली वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएँ जो कि बहुत सिंपल से हों, बेसिक से हों और हर घर में मौजूद हों। तो जब तक आप इनको पूरा करते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि आपके और मेरे बीच में हाइल हो रही है ये कमर्शियल ब्रेक। सो कमर्शियल ब्रेक के उस पर होती है आपसे मुलाकात, तब तक आप इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और डीवाई डायलॉग की इस जर्नी का हिस्सा बने रहें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-079-32।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: The station with the best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: Badana 87.1 FM.

वेलकम बैक तमाम सुनते हुए समातों को एक बार फिर से खुशामदी टीवा डायलॉग में, और मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। चलिए जी लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपसे ब्रेक से पहले शेयर कर दिए थे और आपने नोट भी कर लिए थे, तो अब ज़रा बढ़ते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब।

सबसे पहले आपने क्या करना है, मशरूम को अच्छे से साफ़ कर लेना है। सो मशरूम को गीले कपड़े से साफ़ कर ले या जल्दी से धोकर टिश्यू पेपर से बिल्कुल ड्राई कर ले। मशरूम के 2 या 4 टुकड़े कट करके रख ले, इसमें हल्दी और नमक मिलाकर एक तरफ रख दे। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया, मशरूम्स को क्लीन किया, साथ ही साथ उनमें सॉल्ट और हल्दी को लगा के रख दिया। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, जिसमें हम तैयार करेंगे मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला। सो एक छोटा बाउल ले लेंगे, जिसमें हम फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। अब दही में कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और चाट मसाला, इन तमाम तर स्पाइसेस को ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छा सा स्पाइसी सा और स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जिसमें हम तड़का लगाएंगे और साथ ही साथ भून लेंगे मसाले को। सो अब हम एक कढ़ाही चूल्हे पे रखेंगे, उसमें शामिल करेंगे तेल या फिर मक्खन। सो यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। सो इसको गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, 10 सेकेंड्स के लिए उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब बारी आती है इसमें शामिल करने की अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ हरी मिर्चें। सो इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को 1 से लेकर 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सो जैसे ही अच्छे से भून जाएंगे, हम शामिल कर देंगे टमाटर और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जहाँ तक कि टोमेटोज बिल्कुल नरम हो जाएँ और बिल्कुल गल जाएँ। सो इस तरह से हमारा हो गया मसाला तैयार और भूनने भी। अब बारी आती है सब मिक्स करने की। सो चूल्हा बिल्कुल लो हीट पर कर देंगे। अब दही वाला मसाला इसमें शामिल कर देंगे धीरे धीरे, साथ ही साथ लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दही फेंटता जाए। सो इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक मसाला और तेल बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए। सो जैसे ही आपको लगे कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल और मसाला अलग अलग से दिख रहा है, तो अब हम इसमें वो तमाम तर वेजीज ऐड कर देंगे जो मैंने आपको मेंशन की थी डिस्क्रिप्शन में। सो अब शामिल होगी इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल, साथ ही साथ इसको 1 मिनट तक पका लेंगे, साथ ही में हम हल्दी, नमक, लगे हुए मशरूम्स उनको भी ऐड कर देंगे, चूल्हे को बिल्कुल तेज कर देंगे। सो मशरूम अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए तेज आंच पर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक पानी बिल्कुल सूख जाए और गाढ़ा मसाला ना बन जाए। सो जैसे ही आपको लगने लगे कि अब आपका मसाला हो चुका है गाढ़ा, तो अब हम जल्दी जल्दी से अपनी इस रेसिपी को दे देंगे फाइनल टच। अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, इसको हाथ से मसल कर ऊपर से छिड़क देंगे, साथ ही साथ हरा धनिया और नींबू का रस, इन्हें भी अच्छी तरह से ऊपर से मिक्स कर देंगे। अब बारी आती है चूल्हा बंद करेंगे और हमारी जो ये रेसिपी है मज़ेदार से चटपटे से मशरूम्स हो गए हैं तैयार। अब चाहें तो आप इसको सिंपल भी खा सकते हैं रोटी के साथ या नहीं तो चावल के साथ।

अब यह पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप इसे रोटी के साथ नोश फरमा सकते हैं या चाहे तो पराठे के साथ भी या फिर किसी भी स्नैक या एपेटाइजर में। बट ऑनेस्टली जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यू विल फील कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, मुख्तलिफ और मुनफरद सी रेसिपी है, और ये इस तरह की रेसिपी है जो नॉर्मली हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। सो आप लास्ट ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मैं तो कहती हूँ आज ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे इज़ अ डे इन एशियन फैमिलीज जहाँ सब एक साथ मिल बैठ कर खाना खाते हैं। सो अच्छा है ना, आपस में प्यार मोहब्बत का एहसास भी बढ़ेगा और कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरद खाने को मिलेगा। सो लास्ट में ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ट्राई करने के बाद मुझसे फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं दोबारा से अगले दिन नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपके साथ मज़े मज़े के पकवान शेयर करूँ। अच्छा, फीडबैक किस तरह से शेयर करना है सो उसका तरीका भी बताती चलती हूँ। 01157100971 इस नंबर के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता सकती हूँ किस तरह से आप हमें लाइव ट्यून कर सकते हैं। सो www.radiofaza.com.uk इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।

सो द लिसनर्स, शो में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत से जासमीन लतफ कलाम को शामिल करने का। तो आइए मिलकर सुनते हैं एक अच्छा सा कलाम, एक ऐसा कलाम जो हमें थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दे और रूह को ताज़ा कर दे। सो ये कलाम मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला तो साथ ही साथ चलता जा ही रहा है।

ठीक है लिसनर्स, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा और उम्मीद करते हूँ कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। और आज के हवाले से अगर आपकी कोई हो क्यूरी या अगर कुछ आपको ना समझ आया हो सो सिंपली आप वो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ये क्या अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शो ख़त्म हो रहा है लेकिन आपका दिन आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश करें कि इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाएँ, यादगार बनाएँ, किस तरह से अपनों के साथ वक्त स्पेंड करें, अच्छे अच्छे काम करें और बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से खुद को बचा के रखें। और इसी तरह से ये कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनका भी बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी दूसरे लोगों की ज़िंदगी से कनेक्टेड होती है और हो सकता है कि आप का कोई भी हार्श एटीट्यूड या फिर बुरा एटीट्यूड किसी की दिल आज़ारी करें। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते ये अच्छा सा कलाम सुनते जाएँ।

बट उसी के साथ साथ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाएंगे। आप सिर्फ मेरे साथ मैसेज के थ्रू नहीं बल्कि लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी आवाज़ का जादू भी हम तक पहुँचा सकते हैं। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि मुझे सुनने वालों की आवाज़ किस तरह की है। सवाल जुमे का दिन है, सबके लिए दुआ करेंगे। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो वो सबसे पहले आपके हक में कबूल होती है, बट इस लालच के पीछे नहीं करनी सभी लिए दुआ कि आपके हक में पहले कबूल हो। खुले दिल से जो है, सच्चे दिल से दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला जो है वो सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ जो हैं लेकर आएँ। वर्ल्ड प्रोग्राम का छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है प्रोग्राम में, जिसके हवाले से मैं डिस्कस स्टार्ट करती हूँ, लेकिन रैंडम मैसेजेस जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो फिर छोटे छोटे पैगाम जो है मुझे प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से भी प्रोग्राम में शेयर कर देती हूँ, उस हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है, जितना इल्म उस चीज़ के बारे में मुझे होता है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात का इल्म मुझे ही हो, कभी कभार कुछ बातें मुझे नहीं पता होती जिनके बारे में आपको पता होता है, कभी कभार आपको वो बातें नहीं पता होती जो मुझे पता होती हैं, इसलिए जो है ना वो एक दूसरे को बताने से जो है ना वो बातें जो है वो इधर उधर हो जाती हैं, फिर कभी कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में अगर किसी ऐसे मुकाम पर कोई वो बात करनी हो जो मैंने आपको समझाई हो तो वो आपके काम भी आएगी, या फिर किसी ऐसी महफिल में बैठ कर आप उस बात को करें और फिर आपसे कोई पूछे कि आपसे ये बात किसने कही थी, तो फिर वहाँ पर मेरा नाम जो है ना वो लिया जाएगा, और फिर किसी ऐसी महफिल में आपका जिक्र हो जहाँ पर आपको कोई जानता भी ना हो, तो ये चीज़ वहाँ पर बड़ी अच्छी लगती है, और फिर जब आपका जिक्र होता है ना तो फिर लोगों का आपसे मिलने का जी भी करता है। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमेशा की तरह एक छोटे से कलाम के साथ किया जाता है, तो आइए एक छोटे से कलाम की जानिब बढ़ते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको ये कलाम पसंद आएगा। प्रोग्राम में आवाज़ शामिल किया जी शफकत अमानत अली की और सनम मारवी की। सवाल इन आवाज़ों को सुनिएगा, इसके सुपारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून 97.1 FM एंड ऐप साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास

0: मेरा जिस्म उत्ते
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
3: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
2: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
3: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
2: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now at xlsnawab.co.uk.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
5: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
6: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
5: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
6: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
6: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
5: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
6: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
5: टेस्ट भी वाइब भी।
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मज़ेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
7: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
6: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
7: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
6: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
8: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
9: Radio Bazaar 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

ये गाना डेडिकेट करते हैं ऐसे लोगों को जो मेहनत करना चाह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए गाना है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा आपका अपना रेडियो है।

फजा 97.1 FM पे ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी लाइव को शेयर नहीं किया तो लाइव को शेयर कीजिए, अगर आप अभी तक ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो एप्लीकेशन पे जाइए, आईफोन यूज़र हैं तो एप्लीकेशन पे ऐप स्टोर पे जाइए, अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए रेडियो फजा 97.1 FM और ऐप डाउनलोड कीजिए। लाइव कॉल करने के लिए 0115710971 डायल कीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक नसीहत है जिसे आप अपने मद्देनजर रखें कि दिल उसी के सामने खोलना चाहिए जिसने बनाया, यानी अपना दिल आप सिर्फ अपने रब ताला पे के सामने रखें, उसी के सामने अपने दिल की हाजत ज़रूरत पेश करें, ना कि लोगों के सामने, लोग आपका बाद में मजाक उड़ाते हैं, इसलिए इस गलत फहमी से दूर रहें। सुनते हैं एक सॉन्ग, इसके बाद फिर मिलते हैं वक्फे के बाद।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।

0: surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए।
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
5: रेडियो बाजार 97.1 FM।
6: हिट म्यूजिक, बैक टू बैक।

वेलकम बैक टू रेडियो फजा एफएम 97.1। आप सुन रहे हैं एफएम 97.1 रेडियो फजा नॉटिंघम। वेदर की बात करें तो आज वेदर काफी सनी है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है नॉटिंघम का। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। याद रखेंगे कुछ दरवाजे हमें खुद पर खुद ही बंद करने पड़ते हैं कि जिंदगी के खुद फरेबी और खुशगुमाइयों में से रहने से बेहतर कि इंसान एक ही बार खुद को झलसती हुई हकीकत के रूबरू कर दे। कुछ लोग आपसे हसद करते हैं, लेकिन याद रखें कि हसद मिजाज लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर उस सवार का पीछा करते हैं जो उनसे रफ्तार में तेज होता है। इसलिए उनकी परवाह ना कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। एक फरमाइश आई है अली मंगला से, कहते हैं कि 90s के गानों में से कोई गाना प्ले कीजिए। चलिए उनकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनू कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसीब हेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 एफएम नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो में हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट एंड आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुशामदीद, जय अनुसद, बिस्मिल्लाह पखार रेगले, अस्तलविस ताओ गना दिल तराशा। उम्मीद वासी का जी, जो जहाँ जिस हाल में होगा खुशबाश होगा, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा। बंदे ने चीज उस्मान खान फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से अब से लेकर ठीक ठीक दो घंटे तक प्रोग्राम जिसका नाम ड्राइव जोन है, हम करेंगे खूब गपशप, मौज मस्ती, हंगामा और इसके अलावा खूबसूरत से ट्रैक्स आपकी मर्जी के, तभी जब आप शामिल होंगे। अदरवाइज सिर्फ मेरी मर्जी के ही ट्रैक्स चलने वाले हैं, लेकिन आई नो वेरी वेल के इस टाइम पे किस तरह की प्लेलिस्ट जो है वो अच्छी लगती है, किस तरह का म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं। आफ्टर ऑल इतने अरसे के बाद भी अगर मुझे आपकी चॉइस का पता नहीं चलेगा तो वही जो आपके जहन में सबसे पहली बात आई है, हाँ वो मुंह से पहले जो लगता है। खैर जनाब, मुझे कहते हैं उस्मान खान और हम दो घंटे करेंगे मौज मस्ती, इसके साथ साथ आप भी मेरा साथ देंगे और प्रोग्राम में शामिल होकर बताएंगे कि आप फलां इब्ने फलां फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं। और उसके लिए करना आपने सिर्फ इतना सा है, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और डायल पैड को ओपन कीजिए, नंबर बताता हूँ, इस नंबर को नोट कीजिए, सेव कीजिए और फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी खूबसूरत सी पसंदीदा सी गज़ल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। हवा के दोष पर लहराता, गुनगुनाता, सनसनाता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे ही मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चिकमगाएगा, अजी सुनिए ना, सुनती हुई तमाम दर खूबसूरत सी समातों की नज़र हो जाएगा। सो आर यू वेटिंग, जल्दी से मोबाइल फ़ोन उठाइए, डायल पर ओपन कीजिए, नंबर नोट कीजिए। ये नंबर वो क्या है, अच्छा खैर ये वो साइड पे रखते हैं और नंबर नोट करते हैं। द नंबर इज 0115710097 1। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710097 1 टेलीफोन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है जनाब हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना और बताना है कि आप फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं, खूबसूरत सा नाम, इलाके का नाम और उसके बाद पैगाम लिखकर आपने यहाँ पर भेज देना है। अगर नॉटिंघम के इर्द गिर्द में जहाँ पर भी आप हैं ट्रांसमिशन आप तक ठीक से नहीं पहुँच पा रही, शूशा आ रही है, तो आप यूँ कीजिए कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और गूगल पर चले जाइए, गूगल बाबा से कहिए कि वो आपको लेकर चले लाइव स्ट्रीमिंग पर रेडियो फजा की, और अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो फिर हाथ इस्तेमाल कर लो, जी हाँ, टाइप करने के लिए। और आपने गूगल पर जाकर टाइप करना है radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे वहां पर लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम चार्जेस, कौन कौन से प्रोग्राम करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम करते हैं और किस टाइम पे प्रोग्राम करते हैं, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ले लीजिएगा, मुफ्त में है। सवाल जनाब, इसके अलावा अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में रेडियो फजा आपका साथ दे, तो डोंट यू वरी, करना कुछ यूँ है कि आपने उसी वेबसाइट पे एक प्यारा सा हल्का सा छोटा सा चुनो मुनो सा मैसेज जो है ड्रॉप कर देना है, हमारी मार्केटिंग टीम खुद आपसे रब्ता कर लेगी और आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में हम आपका पूरा पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती जब तक उसको हम ठीक से देख परख नहीं लेते, तो इस वजह से आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें आपका और आपका हमें पता चलेगा। वेल जनाब, लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। करना आपने कुछ यूँ है कि प्ले स्टोर पर जाकर या फिर एप्पल स्टोर पर जाकर आपने सर्च बार में जाना है और लिखना है रेडियो फजा 97.1 FM। एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी पर्पल बैकग्राउंड के साथ गोल्डन माइक वाली एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, उसको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बआसानी आप हमें सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट होना चाहिए। तीसरा रास्ता भी पसंद नहीं आया तो चलते हैं चौथे रास्ते की तरफ। अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप हमें डैप पर ट्यून कर सकते हैं, फजा डैप ट्यून कीजिएगा और मुझे मजीद क्लिस्टर एंड क्लियर वॉइस में सुन लीजिएगा। बस जनाब, ये वो तमाम तर रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर आपने हमारे ड्राइव जोन में शामिल होना है और प्रोग्राम में शामिल होकर अपने होने का एहसास हमें दिलाना है। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आज हम कुछ एक थोड़ा सा छोटा सा मोटा सा सरप्राइज भी है आपके लिए, लेकिन वो क्या सरप्राइज है वो थोड़ा सा आगे चल के आपको बताएंगे। उससे पहले आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सी आवाज़ के साथ, और ये आवाज़ जो है ये मेरी नहीं बल्कि आपके दिल की आवाज़ है, और जब दो दिलों की आवाज़ें सेम हो जाती हैं तो फिर अब बजती है ये वाली ट्यून जिसको
आप सुन के यकीनन अच्छा महसूस करेंगे। मैं हमेशा की तरह ये बात कहा करता हूँ, आज भी कहूँगा कि मुझ में और गजनी में सिर्फ बालों का फ़र्क है, वरना दोनों की सेम याददाश्त है। मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं क्या कहने लगा था और क्या करने लगा था। अभी मैंने बड़ा प्यारा सा एक गाना निकाल के रखा था जो प्रोग्राम की शुरुआत में शामिल करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया वो गाना कौन सा था। तो चलें, खैर भूल चूक तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है। फिलहाल हम शामिल करते हैं ये खूबसूरत सी आवाज, धुरंधर मूवी से लिया गया ये ट्रैक। रणवीर सिंह पर पिक्चराइज हुई ये मूवी और खूबसूरत सा ट्रैक गहरा हुआ, थोड़ा सा रोमांटिक है। और उस रोमांटिक की वजह ये है कि आप इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं, और अगर आपके बगल अगल में समन स्पेशल है तो फिर ये सॉन्ग उनके नाम, मेरा कुछ नहीं है, आपकी तरफ से उनके नाम। उम्मीद है कि आप जरूर पसंद करेंगे इस खूबसूरत सी आवाज को। इस आवाज के उस पार होगी आपसे मुलाकात, डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव जोन। सो स्टे ट्यून।

0: ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके लड़के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे और मैं आपके साथ साथ हूं। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिस्टिंग फॉर 97.1 एफएम एंड डैब प्रोग्राम कॉल ड्राइव जोन। और जैसे मैंने आपसे कहा था एक इस गाने से पहले कि हम आपके लिए एक सरप्राइज है, और सरप्राइज ये है, इसको रिवील कर ही देते हैं। सरप्राइज ये है जनाब कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज, जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अपनी, मेरे साथ बैठे हुए एक खूबसूरत सी आवाज़ के मालिक, जिनको हम लोग प्यार से पता नहीं क्या कहते हैं, गुस्से से इनको साइको पंजाबी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ जनाब, लेटेस्ट अभी अभी इनका एक खूबसूरत सा सॉन्ग वायरल हुआ जिसको बगावत के नाम से लोग जानते हैं। आज इनका ये सॉन्ग वायरल होने के बाद हमने इन्हें अपने स्टूडियो में मधु किया, और उम्मीद है कि हम इनसे वो तमाम तर बदले लेंगे जो शायद बाकी नहीं ले सकते। वेल जनाब, हमारी मुराद है साइको पंजाबी से, आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम जी।
0: हजूरबन, मैं भी आपको साइको पंजाबी कह के बुलाऊं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: क्या वजह है इसकी, ये आपने ये नाम क्या सोच के रखा पहले?
1: ये नाम जी मैंने सोच के नहीं रखा बेसिकली।
0: अच्छा,
1: तो ये दोस्तों ने नाम जो था ना साइको डाल दिया
0: किसी बदले की वजह से?
1: नहीं नहीं, बदला नहीं था, यही वजह थी कि मैं एक जिद पे अड़ जाता था, वो सारे एक साइड पे होते थे, मैं एक साइड पे होता था।
0: वेरी गुड,
1: तो वो कहने तू साइको ही है।
0: सो यानी कि आपके इस साइको पन ने आपको मशहूर कर दिया?
1: साइको पन ने, हालांकि मैं चाहता था मेरा शुएब नाम जो है वो ही चले।
0: अच्छा,
1: लेकिन लोगों को याद साइको ही है, मैं कहूं जेडे लोगों को पसंद
0: चलन दो। ये भी ठीक है जी। वेल जनाब, आपको बताते चलें कि साइको पंजाबी जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज हम इनसे वो तमाम तर बातें पूछने वाले हैं जो बातें इन्होंने शायद आज तक अपनी फैमिली के अलावा या दोस्तों के अलावा किसी को नहीं बताई। अब वो कौन सी बातें हैं? सिटियां तो नहीं साइको बजाए ना। खैर जी, हल्की फुल्की चिट चाट तो साथ साथ चलेगी, और हम वक्त को भी मद्देनजर रखेंगे, उसके साथ साथ साइको से पूछेंगे। साइको, बिना वक्त को जाया किए हम आपकी जर्नी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे आपके ये म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई?
1: बेसिकली ये मेरी शुरुआत ना बचपन से मुझे बहुत ज्यादा शौक था।
0: ओके।
1: लेकिन पता नहीं था कि इस तरह के इस फील्ड में इतना आगे आएंगे, इस तरह म्यूजिक के अपने गाने बनाएंगे, इस तरह हम आ जाएंगे। तो 2010 में एक गाना आया, इंडियन पंजाबी गाना था, रैप का सॉन्ग था।
0: अच्छा,
1: तो वो गाना मैंने सुना, मैंने कहा यार वो बड़ा ना टच कर गया ना दिल को।
0: अच्छा,
1: तो फिर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने भी एक गाना लिख लिया, मैं लिख भी सकना,
0: गुड हो गया।
1: मैं गा भी सकना, तो पता किसी चीज का नहीं था, वो ले के गाना चले गए जी स्टूडियो।
0: अच्छा,
1: तो बस ऐसे स्टूडियो गए, उन्होंने कहा यार आपकी तो आवाज बड़ी अच्छी है जी, ये उन्होंने तो फिर हमें पॉलिश किया।
0: अच्छा,
1: तो जो कुछ वो सेविंग थी फास्ट जितना कुछ था, बस उन्होंने दे के आगे गाना में नहीं मिला, बहरहाल वो हम दे के आगे सारा कुछ।
0: वेरी गुड हो गया। तो ये आपकी स्टार्टिंग थी जहां से आपको पता चल गया कि आप गा भी सकते हैं,
1: गा भी सकते हैं,
0: पैसे देके गा सकते हैं। राइट, तो आपको याद हो कि आपका पहला गाना जो मार्केट में लॉन्च आपने किया वो कब था और कौन सा था?
1: पहला गाना हमारा था जो मार्केट में हमारा लॉन्च हुआ ना 2013 या 14 को, वो गाना था नजरा।
0: नजरा
1: नजरा, उसमें मैंने रैप किया था, एक सिंगर और थे साथ बीच में, तो बड़ा उसमें रैप किया, तो वो बड़ा अच्छा हमारा, वो तब फेसबुक का टाइम था, टिकटॉक का था, दौर नहीं था, वायरल होने के लिए बहुत मुश्किल था।
0: ये किस सन की बात है?
1: 2013
0: की। राइट, उस वक्त हाँ इतना रूज नहीं
1: था। उस टाइम हमने फिर वो रैप किया उसमें नजरा में, वो रैप बड़ा चला, वो गाना बड़ा चला, वहां से थोड़ा बूस्ट मिला, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कर सकते हैं।
0: राइट, यानी कि आपकी शुरुआत जो है वो रैप से हुई थी?
1: रैप से हुई थी,
0: ठीक हो गया, यानी कि आपने अपने नाम को सही इस्तेमाल किया रैप में आके, ये नाम वैसे रैप में ही सूट कर सकता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी आपकी कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिससे आप इंस्पायर थे उस वक्त रैप में?
1: रैप में मैं दो तीन पर्सनैलिटी जिनसे मैं उस दौर में, पहला नाम जो है वो हनी सिंह का है।
0: आहा, ब्लू आईज।
1: अच्छा। फिर बोहेमिया,
0: फिर वो
1: दोनों को सुनते थे, दोनों बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, और मैं स्पेशली बोहेमिया की जो जितने भी उसके गाने थे एक मैसेज होता था,
0: एक
1: फील थी उसमें, हनी सिंह के एक अपना वो
0: करने का,
1: तो उन दोनों से बहुत इम्प्रेस था।
0: ठीक हो गया, वो भी आपसे थे?
1: वो ज्यादा इंप्रेस था, मैं याद ही नहीं की।
0: सही हो गया। आपको पता है जनाब के साइको पंजाबी में और सिड रैपर में, उसमें क्या नाम है अब लिया आपने, हनी सिंह और बोहेमिया में, इन तीनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, ना ये इन्हें जानते हैं ना वो इन्हें जानते हैं। लेकिन जी इन फ्यूचर हो सकता है, जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम बना रहे हैं म्यूजिक फील्ड में, आगे जाकर आपको उनके साथ इवेंट करने का मौका मिल सकता है। और कभी इत्तफाकन, मुझे सिर्फ ये बताइए, कभी इत्तफाकन इन दोनों में से किसी एक से मुलाकात हो, जो पहला जुमला क्या होगा?
1: पाजी कैसे हो
0: पाजी कैसे हो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये हनी सिंह को आप कहेंगे तो समझ में आता है, अब आप बोहेमिया को अगर कहेंगे तो वो थोड़ा सा, क्योंकि उनकी पंजाबी मैंने देखा है, पंजाबी उर्दू और इंग्लिश उनकी कॉमन होती है।
1: वो पाकिस्तान से हैं, ऑफकोर्स
0: वो कराची से हैं, तो बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, हम गपशप तो इसी तरह जारी और सारी रखेंगे और इसके साथ साथ हम इनके सॉन्ग्स भी आपको ज़रूर सुनाएंगे जो कि YouTube पे अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन भी सकते हैं, हम जरूर बताएंगे। और इनसे हम लाइव भी आज सुनेंगे
1: जी, जी,
0: और हमारे पास म्यूजिक कुछ भी नहीं है, ठीक है,
1: हम
0: ओरिजिनल नीट एंड प्योर आवाज आपको सुनाने वाले हैं।
1: फिर ऑडियंस कमेंट करे कैसा लगे उनका, हम तो लाइव सुनाएंगे।
0: आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं और मैसेज करने के लिए आपने जो नंबर है वो नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। नए आने वाले तमाम तरह मौजूद मानो को भी खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, नाम है ड्राइव जोन और मैं और साथ मेरे मौजूद हैं इस वक्त साइको पंजाबी, जिनको घर वाले शुएब कहते हैं और बाहर वाले सारे साइको पंजाबी कहते हैं। सो जी नंबर है 0115710097। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमें बताना है कि इनकी आवाज आपको कैसी लगी है, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सी आवाज, ताकि हम इनकी आवाज को पॉलिश करने के लिए थोड़ी सी ना मेहनत कर लें तब तक आप ये खूबसूरत सी आवाज सुनिए, लौट कर वापिस आते हैं, साथ रहिएगा। Thank you.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: मुझे कहते हैं उस्मान खान और इस वक्त मेरी वीडियो बन रही है तो मुझे जरा टेंशन होकर बैठना पड़ेगा. वेल जनाब, उस्मान खान आपके साथ हैं और हमारे साथ साथ मौजूद हैं एक और पर्सनैलिटी जिनका थोड़ी देर पहले हमने आपसे तारुफ भी करवाया, गपशप भी चली, यानी कि साइको पंजाबी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे थे कि कोई ऐसा गाना जो आप ना गा सकें और फिर हम आपका चेजा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सारे गाने गा लेता हूँ. सो मेरा ख्याल है साइको के हम और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो बेताब हैं आपकी असली वाली आवाज़ सुनने के. सो एक वो गाना मुझे, बल्कि रैप जो आपने बताया कि शुरू में सबसे पहला जो आपका रैप था, मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स को उसकी दो लाइनें अगर आप हाँ सुना दें.
1: उसमें हमारा रैप था, काश तू मैनू समझ दी, काश तू मैनू समझ दी, हुण तेरा राजा मर गया, सूली ते चढ़ गया, आई ना दिखाना तेनू, जिद ते अड़ गया, कड़ी तैयार कर, मेरा इंतजार कर, नवे दिलां दा ना फिर तू व्यापार कर, असी तेनू दिल विचू कढ़ दिता, जा जिन्हू मर्जी तू प्यार कर.
0: आए हाय हाय हाय, ये गाना तो बदवा दी
1: बदवाई दीती थी.
0: इतना दुख
1: उस लिहाज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स
0: जबरदस्त. यूट्यूब और फेसबुक इन्हीं दो प्लेटफॉर्म पे था, सही हो गया. अच्छा मुझे बताएं कि आपके साथ जो दूसरे सिंगर थे वो भी आप ही से, पाकिस्तान से ही उनका भी ताल्लुक था?
1: जी जी, पाकिस्तान से थे वो.
0: सही सही सही, ठीक हो गया जी. आपने इनका ये रैप तो सुन लिया. मेरा ख्याल है कि इनका एक खूबसूरत सा ट्रैक मेरे पास मौजूद है, उस ट्रैक को आपको सुनाते हैं. उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. इस आवाज़ के उस पर आपसे दोबारा मिलेंगे. मज़ीद इनसे जो मेरे पास सवालात हैं वो मैं थोड़े थोड़े करके करूँगा, सारे एक बारी मैं नहीं करूँगा. काली कार खूबसूरत सी आवाज़ साइको पंजाबी की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. लौट कर आते हैं इस आवाज़ के उस पर.

0: जी हाँ जनाब साइको साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इनके पास गाड़ी नहीं है, अगले साल ये गाड़ी लेंगे और काले वाली लेंगे, ये क्या सोच के गाना लिखा था?
1: ये बेसिकली एक दोस्त की थीम थी। दोस्त होता है साथ, तो वो कह रहा था यार कद तक मोटरसाइकिल पे फिरना है।
0: अच्छा,
1: तो दूसरे को देखता उसके पास गाड़ी है, उसको दिलासा देंगे, टेंशन ना ले, अगले साल का डाल लेंगे, मेरे लगे है कम।
0: अच्छा, वैसे हैरानगी की बात है, लोग एक दो चार दिन आगे डालते हैं, पूरा साल आगे बढ़ा देता। खैर जी, स्टार्टअप था तो जाहिर है फिर उस वक्त पे ये सारी चीजें होती है। मुझे बताएं साइको, साइको ठीक है
1: जी,
0: ना?
1: जी, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल नाम है ना, वो
0: बंदा नहीं है, सिर्फ नाम है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब इस फील्ड में एंटर हुए तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा?
1: बहुत सारी मुश्किलात थी उस्मान भाई।
0: जैसे कि
1: आप स्टार्ट लेते हैं तो इस फील्ड में आपके साथ सिंसियर कोई भी नहीं होता। मतलब हम स्टूडियो में गए, स्टूडियो में उन्होंने कहा वो हो क्या आवाज है आपकी।
0: अच्छा।
1: वो जो कमेटियां डाली हुई थी पैसे थे साथ, वो जी सारे वो उन्होंने खान साहब कह कह के हमसे सारे निकल गए। वो अच्छा। उस दौर में 2012-13 में वो जो कुछ पास सेविंग थी 40-50 हजार का, वो सारे दे दिए। फिर वो किसी ने कह दिया जी वो फलाने गाने तेनू लेना नाल, 30 हजार तेरा पैंदा है, चल ही मैं पास हाँ। तो मैं नहीं, नहीं थे, पता ही नहीं था किसी चीज का, नहीं था पता। अच्छा। वो अब्बू से ले, अम्मी से ले।
0: अच्छा।
1: जी तू मितू कट्ठे कर।
0: और ये वो स्टूडेंट लाइफ की बात,
1: स्टूडेंट लाइफ थी जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में थे।
0: बिल्कुल सही।
1: तो फिर वो जब सारी जगह धक्के खाली हो गए तो फिर बंदा सही मिला गया यार, जरा सिखाण वाला, उन्होंने कहा मैं इतनी फीस लैसा। मैं कहा यार फीस किस देते सामने।
0: अच्छा,
1: तो बस फिर बड़ी मुश्किल से फिर वो छोटे छोटे रेंज करके कहीं पे काम किया, कहीं से करके थोड़ा थोड़ा करके रेंज करके फिर हम जुड़े रहे।
0: अच्छा, फैमिली का क्या रिस्पांस था?
1: मेरे जो फादर साहब हैं वो खुद शौकीन हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: बचत हो गई,
1: बचत हो गई।
0: अच्छा,
1: तो लेकिन जो अम्मी थी तो उनको था ये केड़ी सैड तो टूट गया। हमारा माशरा आपको पता है,
0: जाहिर है पाकिस्तानी
1: नहीं पसंद करता के वो, हमारा मजहब भी उस तरह से नहीं,
0: जाहिर है वो सिंगिंग,
1: लेकिन जो अंदर था वो बचपन में थे। जब मैं
0: खान साहब बचपन से थे,
1: साइको खान साहब बचपन से
0: थे,
1: तो फिर अम्मी ने बड़ा बड़ा इतराज किया कि ना जा, ये ऐसी फील्ड, ऐसी फील्ड है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यार ये नहीं छोड़ेगा, करके रह सी, ये नहीं पीछे हटदा, फिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया।
0: जबरदस्त, यानी कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल गया। दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स था?
1: मजाक उड़ाते
0: वो वर्ड ना मैं यूज करूंगा ना आप करें, वही वाला
1: ना बड़ा सिंगर था।
0: अच्छा, ये बड़ी होती है, ये ऐसा नहीं है कि दोस्त जो है वो आपकी टांग खींचते हैं आपको नीचे गिराने के लिए, बल्कि वो एक फन के तौर पे ये चीजें होती हैं। और जब आप मशहूर हो जाते फिर यही दोस्त यार सेल्फी देख जाए,
1: मेरा यार ही ना।
0: ये चीजें होती हैं। सो वेल, आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया या सिर्फ मजाक ही उड़ाया?
1: जो सही बताऊं तो मेरे सिर्फ एक या दो दोस्त ने मुझे सपोर्ट किया,
0: सपोर्ट किया था।
1: उसने कहा तू कार पीछे मोड़ा ला के,
0: वेरी गुड,
1: तू अच्छा कर, बुरा कर तक ही जाएगी जो होगा।
0: सही हो गया। और बाकियों ने?
1: बाकियों ने नहीं, हाँ उन्होंने कहा के कर ले सी।
0: अच्छा, मुझे बताएं इस फील्ड में उस्ताद कौन रहे आपके?
1: जी, जो मेरे पहले उस्ताद रहे ना जी, वो शाहिद राजा साहब।
0: अच्छा, ये रैप में भी उस्ताद होता है?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, इसके लिए भी
1: गला करो तो रैप हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल रैप करना, उसके लिए आपको स्केल की, म्यूजिक की बीट के साथ चलने की पूरी समझ होनी चाहिए,
0: समझ होनी चाहिए।
1: कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं,
0: ऑफ कोर्स,
1: उनको सिस्टम रिदम ना भी सीखे तो चल जाते हैं,
0: वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। लेकिन आपने प्रॉपर इस चीज की ट्रेनिंग की, सीखा
1: जी?
0: और ट्रेनिंग जो है वो करने के बाद शुरू की या स्टार्ट की?
1: नहीं, पहले ऐसे था, थोड़ी सी फनी स्टोरी है कि मैंने वो एक गाना बनाया, मतलब एक महीना तो मैं पूरी रात ना ये मैं और मेरा कंप्यूटर कमरे में बंद रहे,
0: वेरी गुड,
1: मेरे शादी एक महीना ही थी के साथ।
0: अच्छा।
1: और सारा कुछ सीखते रहे। अब एक गाना टूटा फूटा बना लिया, जब दोस्त को सुनाया, कहंदा यार राजे तेरा गाना अद्धा रुपया जांदा, अद्धा रुपया जांदा।
0: अच्छा,
1: तो फिर वो समझ में आया कि यार इसको सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर सीखने की तरफ हम उनका मूव हुए।
0: सही हो गया। और ये बात कह रहे हैं आप अपने स्टूडेंट लाइफ की,
1: स्टूडेंट लाइफ की स्टार्टिंग।
0: सही, जबरदस्त हो गया। तो उसके बाद जब आप आगे बढ़े, जर्नी आपकी आगे चली और आप फिर प्रॉपर आपने इसी को पैशन बना लिया, इसके अलावा भी कुछ करते रहे?
1: ये इस पैशन इसी को बनाया, साथ साथ काम चलता था, जाहिर बात है जो फैमिली सपोर्ट के लिए हम कर सकते थे हम करते थे। स्कूल मेरा खत्म हो चुका था तो आफ्टर मैट्रिक आगे फिर इस काम ने पढ़ना ही नहीं दिया।
0: वेरी गुड हो गया। चले जी, खैर गपशप मजीद हम करेंगे, कुछ और सवाल हैं जो इनसे जरूर हम करेंगे, लेकिन एक और खूबसूरत सी आवाज, और ये भी साइको पंजाबी की आवाज विद रैप, इस खूबसूरत सी आवाज को सुनते हैं, लौट कर वापिस आइएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा।
2: साइको पंजाबी फर्स्ट क्रिएशन।

0: जी हाँ जनाब, लौट के आ चुके हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं। साइको पंजाबी की आवाज़ आप सुन रहे हैं लाइव भी और म्यूजिक में भी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बल्कि एंडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटर जो हैं वो बड़ी देर से इस चीज़ के इंतजार कर रहे हैं कि साइको पंजाबी कहते अपने आज तक उठन के कर दो मेरा शो शुरू होने। खैर जी पाठ, अब जोक बढ़ते हैं दोबारा आपकी जानी पर। मुझे बताइएगा साइको कि मैं आपको बार बार साइको कह रहा हूँ, आप साइको बन तो नहीं जाएंगे?
1: नहीं, वो एक दफा ही बनते हैं सिर्फ एक टाइम ही।
0: अच्छा ओके जी, आगे बढ़े, मुझे बताएं आपके अब तक जो आपकी जर्नी रही है वो तो चले आपने हमें सारी बता दी, आने वाले क्या प्लान है?
1: आने वाले प्लान तो बहुत बड़े हैं जी।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: काली कार लेनी?
1: काली कार नहीं जी, वैगन लेनी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो।
0: चले जी जरूर, जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो जरूर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो नए इस वक्त सिंगर्स उठ रहे हैं ना, बच्चे जिनको भी इन चीजों का नई नॉलेज, उनको कोई ऐसा पैगाम दे जो कम से कम दूसरों से हट के हो, उस्ताद रखे ये करें वो करें, हट के जरा कुछ थोड़ा सा।
1: मैं एक बड़ा ना वो जिसे कहते हैं ना अच्छा एक पैगाम देना चाहूंगा, अगर जो जनरेशन फॉलो करे इस चीज को, एक तो शॉर्टकट की तरफ ना जाएं।
0: राइट,
1: आप देखें जी वो मतलब गंदा गाना आप निकालें जिसमें गालियां, आप लड़के शॉर्टकट देख रहे हैं जैसे गाली निकाल दी बीच में से
0: फेम के लिए,
1: वो आप वक्ती कर लेंगे क्योंकि मैं इस फेस से इस जगह से होके गुजर के आया हूँ इस जगह तक, तो आप जब वो कर लेंगे ना फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि यार मैंने क्यों किया, मेरी बहनें सुनती हैं, मेरी माएं सुनती हैं, कल आपको आपके घर बेटी होगी तो आप वो उसको सुनाएंगे,
0: फैमिली
1: अगर आप तो गाना गाते हुए वो जरूर सोचें कि मैं इसको ये सुना सकूंगा अपनी माँ के साथ बैठ के सुन सकूंगा ये चीज,
0: कभी भी ऐसे ही।
1: तो दूसरा आप छोटा मोटा रखें जहाँ पे हैं, जहाँ पे एक उस्ताद लाजमी रखें,
0: बिना उस्ताद के इस फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते,
1: नहीं बढ़ सकते। उस्ताद वो कहते हैं आपको उधर ले जाएगा जहाँ से आप सालों तक सफर करेंगे, वो आपको दो दिन में
0: बिल्कुल इसी तरह। और आपके अपने भी कुछ शागिर्द हैं आप पे या ले शागिर्द?
1: नहीं मैं बेसिकली आपको बताऊं इतना टाइम ही नहीं होता, मेरे से आते हैं बंदे लड़के लड़कियां के हमें सिखाएं, मैं कहता हूं अपने पास इतना टाइम अपना करा के तानो सिखावा अपना, मैं म्यूजिक स्टूडियो भी साथ कर रहा हूं ना।
0: अच्छा अच्छा, आपने अपना खुद का?
1: जी जी, खुद का म्यूजिक स्टूडियो भी साथ कर रहा हूं।
0: जबरदस्त हो गया। चले जी, आने वाले फ्यूचर में जो आप बता रहे हैं उस हवाले से तो यही है कि आपके मजीद सॉन्ग्स जो हैं
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: और आएंगे
1: बैक टू बैक,
0: और ये रैप ही की तरफ रहेंगे या थोड़ा कुछ साडे वास्ते दुखी बंदे वास्ते भी?
1: बगावत गाना तुसी सुनो ना, तुसी रोए अगर तुसी इश्क कीतिया फिर गल करी।
0: अच्छा मतलब ये बगावत वो गाना है जी, जिस जिसने इश्क किया है और इश्क करने के बाद जिस जिसने अपना दिल तड़वा लिया है, ये उनके लिए गॉड गिफ्टेड है,
1: गॉड गिफ्टेड मोटिवेशनल है।
0: अच्छा मोटिवेशनल,
1: हाँ, उसको इंशाल्लाह ताकत मिलेगी, वो उठ के खड़ा होगा कि तू कली थोड़ी था।
0: ओके जी, हम आपके साथ शेयर करेंगे जरूर बगावत सॉन्ग भी और बगावत बाय साइको पंजाबी, आप इसे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और इनके मजीद सॉन्ग्स भी आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके सुन सकते हैं। ऐसे टिकटॉक से है कोई ताल्लुक वास्ता?
1: टिकटॉक पे भी साइको ही है जी।
0: टिकटॉक पे भी साइको, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप साइको ही हैं
1: जी, और साइको एस वाई के ओ।
0: ओके,
1: ये वाला साइको थोड़ा सा नरम साइको।
0: ओके, तो टिकटॉक पे भी आप हैं, तो मुझे बताइए ये टिकटॉक मजबूरी थी या जरूरी थी?
1: जरूरी थी जी, आजकल के दौर के लिए यूट्यूब से ज्यादा जरूरी टिकटॉक है।
0: अच्छा, कुछ अर्निंग भी है इससे?
1: फिलहाल तो नहीं।
0: आपको नहीं?
1: ना, हमें नहीं है।
0: कैसी उम्मीद है कि आज की हमारी ये गपशप आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अभी अपने मेजबान उस्मान खान को आपने इजाजत देनी है क्योंकि नेक्स्ट मौसम जो है वो आप इसी शो को मजीद कंटिन्यू करेंगे और आपका साथ देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ आज का ये प्रोग्राम करके अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा होगा,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जितना सा लग गया उसको बर्दाश्त कीजिएगा, साइको बन के मत दिखाइएगा। नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए यही पैगाम है जी, अगर आप सिंगिंग के फील्ड में आना चाहते हैं तो एक अदद उस्ताद आपका रखना जो है वो बेहद जरूरी है, और दूसरे नंबर पे ये कि कोशिश कीजिएगा कि आपका कंटेंट जो है वो जाती आपका हो, जब आप दूसरों से लिए हुए गाने गाएंगे तो कल को वापस भी ला सक देने। ये ऐसे ही है ना कि आपने अब तक जितने भी गाने लिखे वो खुद के लिखे और कोई आप पर इस बात का ब्लेम नहीं लगा सकता, और जब आप फेम आपको मिल गई है तो कोई ये नहीं कह सकता अपना पुत्र है मैं लेके देता सी। अब जी दीजिए इजाजत अपने मेजबान उस्मान खान विद साइको पंजाबी को, लेटेस्ट सॉन्ग जो इनका अभी वायरल हुआ है बगावत, उस सॉन्ग को हम प्ले करेंगे, इसके साथ साथ इजाजत भी लेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, मेजबान उस्मान खान को दुआओं में याद रखिएगा। आज के प्रोग्राम में कोई बात दिल पर लग गई तो साइड पर रख लीजिएगा उसको, क्योंकि दिल में और भी बहुत सी जगह होती हैं बातें रखने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, मेजबान उस्मान खान को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए सबका अल्लाह निगेबान। Oh, oh, oh.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। मैं हूँ आरजे मौजम और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब। लेट आने के लिए माजरत चाहूँगा, पर क्या करें, हमारी सीट ही कहीं और चली गई थी और कोई और गेस्ट आए थे और आज आपने एक रैपर और सिंगर को सुना और उनका नाम था साइको पंजाबी। हर जी, साइको पंजाबी को तो आपने सुना, उनके सॉन्ग्स भी सुने, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनी और उनकी सक्सेस स्टोरी भी सुनी और अभी उनका जो सक्सेस जारी है या उनकी स्ट्रगल जो जारी है वो भी सुना और इस वक्त अब आप बंदाना चीज को सुन रहे हैं।

सबसे पहले मैं तमाम सुनने वाले को वेलकम कहता हूँ फजल 97.1 एफएम की तरफ से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने जाने जा रहा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कोशिश करूँगा कि जितना हो सके इस टॉपिक को कवर करूँ और इन आपको आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूँ जो आपकी ज़िंदगी में को बेहतर बना सकती हैं, या आपकी ज़िंदगी को मैं कहता हूँ कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमेशा ऐसी कोई बात किसी ना किसी बंदे के जहन में उस वक्त नहीं आ रही होती, किसी से सुनता है तो वो उसके बात को याद करता है और वो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में उस बात को उसको परफॉर्म करे या उस बात अपनी ज़िंदगी में ढाले तो उससे उसको फ़ायदा हो, तो वो उस बंदे को हमेशा अपने अच्छे अल्फाज में याद करता है। और उम्मीद है कि आप भी मुझे अच्छे अल्फाज में याद करते होंगे, क्योंकि आवाज़ें तो बहुत सी हैं पर आवाज़ वो जो दिल को छुए, और एक आरजे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप हमें अपने होने का एहसास देते हैं। और होने का एहसास किस तरह देते हैं? आप हमें मैसेजेस करते हैं, और आपने भी मैसेजेस करने हैं और हमें बताना है कि आप हमारे साथ साथ हैं। जो तो रेगुलर लिसनर हैं उनको तो पता है कि और साथ साथ होने का मतलब क्या है, और आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। और जो नए लिसनर इस वक्त मेरे साथ शामिल हुए हैं उनको कहना चाहूँगा कि फजल 97.1 एफएम की तरफ से वेलकम, और आपको नंबर भी बता देता हूँ 01157100971। I'll repeat that 01157100971। इसके अलावा आप हमें एप्लीकेशन के ज़रिए भी सुन सकते हैं ऐसे दूरदराज इलाकों में जहां आपको हमारी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आती, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप का नाम है रेडियो फजा 97.1 एफएम। पर्पल बैकग्राउंड से ब्लू गोल्डन कलर का माइक आपके सामने आएगा, नीचे लिखा होगा रेडियो फजा, और आपने डाउनलोड कर लेना है, और जस्ट वन क्लिक पे आप हमें सुन सकते हैं। यह ऐप दोनों iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा इस ऐप में का ये भी फायदा है कि जो

हमारी वेबसाइट है radiofaza.co.uk, आप इधर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल से भी सर्च करके हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे तमाम आरजेज के शेड्यूल्स मौजूद हैं और इसमें हमारी उन तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी किस तरह है कि आपके दिल में जहन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि ज़रूरी क्या हो सकता है उसमें। ज़रूरी ये है कि जो बिजनेसमैन हमें सुनते हैं उनके लिए हमारे एक एडवर्टाइजिंग टीम है जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकती है। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो जस्ट एक मैसेज के लिए उनको भेजिए और वो आपसे खुद रब्ता करेंगे और आप हम कोशिश करेंगे कि आपके बिजनेस को चार चांद लगें। आप सुन रहे थे प्यारे से सिंगर को और ये सिंगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और मैं कहता हूँ कि अभी स्ट्रगल इनकी जारी है। सुना है थोड़ा सा उनको, पर पहले कभी नहीं सुना था। अगर वो अभी सुन रहे हैं मुझे तो आपको कहना चाहूँगा कि भाई जान पहली बार सुने हैं तो। खैर, उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी थी और उन्होंने उनके गाने भी सुने हैं बहुत अच्छे थे। और आप अगर जो अभी शुरू से मुझे इस शो को सुन रहे हैं तो उन्होंने भी उनको शायद सुना होगा, उनकी आवाज़ भी सुनी होगी और उनके गाने भी सुने होंगे। और जिन्होंने नहीं सुने उनको बताता चलूँ कि उनका नाम था साइको पंजाबी और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है उनके सॉन्ग्स।

खैर हर एक इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा लम्हा होता है जिधर इंसान सोचता है कि मुझे ये ज़िंदगी कभी दोबारा मिले ना, तो मैं इसे नए सिरे से जीऊँ और एक नए सिरे से इसकी इंजॉयमेंट करूँ। जिस तरह के हम कोई भी ऐसा काम है जो हम कर चुके होते हैं तो हमें लगता है कि ऐ काम सी बस ऐ भी चीज़ काम सी, इस तरह नहीं होता। आप उसके पीछे स्ट्रगल भी देखा करें और स्ट्रगल अपनी जो है आपने जो की होती है उसको भी नोट किया करें। और वैसे भी आज का टॉपिक भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्सनल ही हो जाएगा, और टॉपिक भी मेरा आज इसी चीज़ पे है आज, क्योंकि मैंने जब उनको सुना और उनकी स्ट्रगल सुनी और उनकी ये चीज़ देखी कि इवन के उनके जो फेलोज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया और मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की। खासकर ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे और इस पे आपकी भी राय लेंगे कि आपको अगर ज़िंदगी गुजारने का दोबारा मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी बात करेंगे या ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जो आपको लगता है कि ये अगर मुझे ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिले तो मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगा। आप काम तो नहीं बता सकता, हर एक का माइंड अपना अपना होता है और हर एक के माइंड में अभी अपनी अपनी बात चल रही होगी कि अगर मुझे ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो मैं ये काम करूँगा।

और यकीनन हर एक को ये चीज़ सोचने को पर मजबूर करेगी कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है कि हम वो दोबारा जीना चाहें। और मुझे मेरी नज़र में अगर सबसे पहले चले मैं बता देता हूँ कि मेरी नज़र में अगर मैं मुझे अगर दोबारा बचपन मिले तो मैं वही शरारतें करना चाहता हूँ जो अभी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गया कि मैं नहीं कर पाता, वही शरारतें जो हम अपने बचपन में किया करते थे, वो मुलाकातें, वो बाहर खेलना, वो कूदना। हमें पता ही नहीं था कि कोई अर्निंग भी कोई चीज़ होती है या मेहनत भी कोई चीज़ होती है। जस्ट हमने फरमाइश करनी और चीज़ पूरी हो जानी, और हमने बस एक लफ्ज़ करना कि ये चीज़ हमने लेनी और वो पूरी हो जानी। अब जब हम खुद कमा के वो चीज़ लेते हैं और हमें अब इस चीज़ का एहसास होता है कि ये चीज़ बहुत मेहनत करके ली जाती है, ना कि फरमाइशों से। वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे फ़ैसले भी होते हैं जो ज़िंदगी में जब बंदा कर लेता है तो बंदा कहता है कि काश के वो वक्त वापस आ जाए जिस वक्त में ये फ़ैसला मैंने लिया था और वो फ़ैसला उस वक्त मैं ना लूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अक्सर फ़ैसले जो जज्बात में लिए जाते हैं या जल्दी में लिए जाते हैं, वो फ़ैसले हमेशा इस तरह के नहीं होते कि आपको उसका फ़ायदा हो। और कोशिश किया करें जब आपका माइंड कूल हो तो उसी वक्त अपने ज़िंदगी के कोई ख़ास फ़ैसले लिया करें और गुस्से में कोई भी फ़ैसला ना लिया करें। और वैसे भी हर एक बंदे की अपनी माइंड पावर है और हर एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ़ है। ये इंसान का अपने ही माइंड में होता है कि उसको कौन सा फ़ैसला लेना चाहिए और कौन सा नहीं। बल्कि मैं कहता हूँ कि इंसान को अपना माइंड जिसको कंट्रोल करना आ गया, मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। क्योंकि इंसान का वो माइंड ही है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और अपनी बातों पर कंट्रोल करते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे इस वक्त करनी चाहिए और किस मौके पर करनी चाहिए, तो ये इंसान की कामयाबी का है। मैं कहता हूँ कि पहली सीढ़ी में से एक सीढ़ी है। और वैसे भी कुछ इंसान की कुछ ऐसी ड्रीम्स होती हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती हैं काश के वो वक्त वापस आता और मैं वो ड्रीम पूरी कर सकता। अब वक्त नहीं है और वक्त ही ऐसी चीज़ है जो इंसान अगर इस चीज़ को समझे तो बहुत इसमें बातें निकलती हैं। बातें तो उसे याद आया तो हमने भी काफ़ी बातें कर ली हैं और आपको एक प्यारा सा सॉन्ग नहीं सुनाया। और साथ साथ इंटरटेनमेंट होनी ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम ही ड्राइव टाइम है और ड्राइव पीक टाइम है ड्राइविंग का। और मैं आप सबको जो इस वक्त मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रही हैं उनको कहना चाहूँगा कि हैव अ सेफ ड्राइव। और मैं कहता हूँ कि जल्दी से देर में घर पहुँचना अच्छा है क्योंकि जल्दी में किए फ़ैसले कुछ अच्छे नहीं होते हैं।

सो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी मिलियनेयर बाय हनी सिंह, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट टू जो शो के हिस्से होते हैं फर्स्ट टू पहले घंटे में, तो उसमें भी एक रैपर थे जिनकी मैं कहता हूँ कि उनको हनी सिंह बहुत पसंद था, तो उनका ही रिलेटेड कोई एक मैसेज आया है, तो मैंने कहा कि उनके साथ साथ उनकी फरमाइश भी पूरी की जाए और ख़ुद भी सुना जाए मिलियनेयर गाना, और मिलियनेयर गाना है हनी सिंह का, और इन्जॉय कीजिए इस म्यूज़िक को और साथ रहिएगा हमारे। आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM विद RJ मौजम, और इन्जॉय करिए इस सॉन्ग को और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसमें होंगी और बातें, क्योंकि बातें अभी बहुत सी हैं।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम ऑन आल्सो डैब। मैं अपने तमाम नए आने वाले लिसनर्स को फजल 97.1 एफएम की तरफ से वेलकम कहता हूं और एक प्यार भरा सलाम कहता हूं। उम्मीद करता हूँ आप हैरियत से होंगे और जिस भी ज़िंदगी के जिस भी सफ़र में आप गामजन हैं, उम्मीद करता हूँ आप हैरियत से पहुँचेंगे। अगर आप इस वक्त मुझे वॉक करते हुए सुन रहे हैं, जॉगिंग करते हुए सुन रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, या इस वक्त अपनी ऑफिस शिफ्ट से घर जाके हमें टेरेस पर खड़े होकर कॉफ़ी के साथ सुन रहे हैं, तो आपको वेलकम कहता हूँ। आज बात हो रही थी ऐसे वो लम्हात की जो आप इंसान कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी वापस आ जाएं, मुझे दोबारा कभी ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो उस चीज़ को मैं कर सकूं। और साथ साथ हम सॉन्ग्स भी सुन रहे थे, साथ साथ इंजॉयमेंट भी हो रही थी और अभी भी हो रही है।

साथ साथ म्यूज़िक का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ आपकी चैट्स भी आ रही हैं और मैसेजेस भी शामिल हो रहे हैं। और उस मैसेजेस शामिल करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको दोबारा बचपन जीने का मौका मिले तो आपको क्या लगेगा कि आपको जीना चाहिए या आपकी ख्वाहिश है कि आपको बचपन जीने का मौका मिले? मेरा तो है, आपका क्या ख्याल?

अच्छा, आपने कभी सोचा कि बचपन में आपके वालदैन हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ पे आपको समझाते थे, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, वक्त पर घर आओ, पढ़ाई करो, और आज हमें एहसास होता है कि वो क्यों कहते थे। और आज जिन जिन के अभी बच्चे हैं और वो भी अपने बच्चों को ये बात ज़रूर कहते होंगे कि यहाँ ये ना करो, वो ना करो, क्योंकि मैंने कल के टॉपिक में यही कहा था ना कि आपके वालदैन ही आपका, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टीचर आपके वालदैन हैं। जब भी टीचर की बात आती है तो आपको स्कूल कॉलेज के टीचर याद आते हैं, पर अपने वालदैन नहीं याद आते। ये बात क्यों है ये भी आपने ज़रूर बताना है। और शायद मेरी तरह कुछ ऐसे भी होंगे लोग के जो कहते होंगे कि अगर मुझे बचपन जीने का दोबारा मौका मिले तो मैं इन बातों को ज़रूर फॉलो करूंगा। साथ साथ आपसे बातचीत भी हो रही है और साथ साथ मेरा आज एक और गाना सुनने का मूड है। आज चलें, आज मेरी पसंद का गाना जो कि धर्मेंद्र मूवी से लिया गया है, और इसके बाद छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आएगी, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपसे एक और सवाल करेंगे, और सवाल होगा नहीं बताऊंगा, ट्विस्ट भी तो होना चाहिए ना कहानी में। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं फजल 97.11 FM विद RJ मौसम। स्टे ट्यून्ड।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड डैब विदार जी मौसम और प्रोग्राम कार ड्राइव जोन। ये वो गाड़ी है जो आपके साथ शुरू होती है 5 बजे और 7 बजे तक, और जैसा कि आपको पता है अभी इस वक्त 6:30 बज चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि बातें जितनी भी हो सकें करें और आपको इंजॉयमेंट भी की करवाई जाए। स्पेशल से सॉन्ग्स प्लेलिस्ट में रेडी कर रखे हैं और आपकी फरमाइशों के मुताबिक कर रखे हैं, और पर मैं एक लिहाज से सॉरी भी कहूँगा कि उनके मैसेजेस शामिल नहीं करूँगा कि जिन्होंने ये सॉन्ग मुझे लगाने को कहा है, क्योंकि वक्त बिल्कुल शॉर्ट है और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है, और हम बात कर रहे थे ऐसी वो ज़िंदगी की ऐसी लम्हा जो आप सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा मिल जाए। और मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का कोई ऐसी गलती आप बताएं कि कोई ऐसी गलती हो जिसमें आपको लगे कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिले तो मैं ये गलती नहीं करूँगा। और वो गलती भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप इस वक्त सारे दिन का काम करके थक चुके होंगे, और कोशिश करूँगा कि आपको इतना सोचने पर मजबूर भी ना करूँ। बताता चलूँ कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो आपको लगे कि मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी में लिया और मुझे लगता है कि ये डिसीजन मुझे बाद में लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे बिजनेस बंदे ने स्टार्ट किए होते हैं या कुछ ऐसी जॉब्स बंदे ने स्टार्ट की होती हैं जो इंसान कहता है कि मैंने अगर ये मुझे ज़िंदगी जीने का दोबारा मौका मिले तो मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों से सबक जो मुझे हासिल हुआ उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि 100% वो सक्सेसफुल जाए, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो गलतियों से ही सीखता है। हो सकता है कि उनका ये कोई ऐसा गलत फ़ैसला हो जो उनको नुकसान भी हुआ हो, पर उन्होंने उस नुकसान से भी सीखा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस वक्त बिजनेसमैन हैं उनको ये चीज़ बेटर अंडरस्टैंड हुई होगी, कि आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपने भी जब भी कभी पहले बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन आपने मेहनत से काम लिया और सब्र से काम लिया, और मैं कहता हूँ कि आज मुझे पता है कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। हाँ, एक बार याद आई, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो खौफ की वजह से कोई काम नहीं करते, जैसा कि मैं अपना इसलिए कहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ मेरी बात हो रही है, पयान सारे होंगे नहीं इसी तरह के।

अच्छा, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला हो कि आपको कोई काम करने का मौका मिला हो तो आपने सिर्फ खौफ की वजह से वो काम ना किया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? आप ये बात भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज तो वक्त थोड़ा है, कोशिश करूँगा कि आपके मैसेजेज मैं मंडे के शो में शामिल करूँ। सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट शो हमारा मंडे को होता है। हमारा और आपका साथ मंडे से फ्राइडे तक होता है, शाम 5 से 7 बजे तक, और ये चीज़ चलें बताई दी आपको। हर जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं उनको तो पता ही है, जो नए लिसनर्स हैं उनको पता चलें कि हमारा प्रोग्राम डेली तो नहीं, मंडे से फ्राइडे 5 से 7 बजे तक होता है, और ड्राइव इसका नाम है ड्राइव जोन। हमेशा ऐसे कुछ गलत फैसले होते हैं कि जिनसे इंसान सिर्फ डर की वजह से वो काम नहीं करता, और मैं इस उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें कि कोई भी काम अगर आपको नहीं भी आता तो उसके बारे में रिसर्च करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और मैं वैसे भी सोशल मीडिया पर अपने बात कर चुका हूँ, और जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं उन्होंने वो बात सुनी होगी कि मैं कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि आप अगर कोई भी ऐसा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश किया करें उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया करें। तो इस चीज़ में भी मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा काम लग रहा है कि आपको मुश्किल है इसमें बारे में, तो कोशिश किया करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लें। AI का दौर है, AI से आप थोड़ी सी मदद हासिल कर सकते हैं, पर फुली AI पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि AI हमेशा आपको एक क्लू देता है, ना कि आप उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जस्ट रिसर्च बेस एक सिस्टम है जो आपको एक छोटा सा गाइडलाइन देने के लिए बनाया गया है, ना कि आप 100% उस पे मुनसर हो जाएं। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि हमेशा कोई भी फैसला लेते हैं तो हमेशा अपने सीनियर्स से राय लिया करें, ना कि फुली AI से। और मैंने ये प्रैक्टिकली खुद भी देखा है कि जो बात AI कहता है उससे बेटर समझ आने वाली बात जो हमें हमारे सीनियर्स बताते हैं वो होती है। और क्योंकि AI ने एक लिमिटेड सा वो सोर्स होता है, उसी के अंडर रह के उसने आपको रिजल्ट देने होते हैं, और देखें बातों से बातें निकलती हैं और बातें कहाँ को चली जाती हैं। कोशिश करता हूँ मैं अपनी बात शार्ट किया करूँ, पर बातों से बातें निकल जाती हैं। सो अपने टॉपिक पर ही वापस आते हैं, और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हाँ जी, यूके में रहते हुए आपको ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि यूके में रह अगर मैं ना आता तो मैं ये करता, या यूके आने से पहले अगर ज़िंदगी का दोबारा मौका मिले क्या आपका फैसला यूके आने वाला दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे? साथ साथ आपको एक प्यारा सा म्यूजिक भी सुनाते हैं, और सॉन्ग्स हैं सॉफ्ट सा म्यूजिक है, प्यारा सा म्यूजिक है, लवफुल म्यूजिक है, और ये मैं डेडिकेट करता हूँ तमाम लिसनर्स को, उन तमाम कपल्स को जो इस वक्त साथ साथ बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे हमारे साथ जा रहे हैं, और इस वक्त अपने पार्टनर के साथ भी लॉन्ग ड्राइव पर हैं, और यहाँ घर पे अगट्ठे बैठ के सुन रहे हैं। इमरान खान भी एक अच्छे सिंगर हैं, और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और कोशिश किया करेंगे सबको सुना करें, कोई ना कोई ऐसी बात इनकी भी होती है जो इंसान को ज़िंदगी का सबक सिखाती है। कुछ ने तो चवलें भी मारी होती हैं, उनको कोशिश करें ना फॉलो किया करें, और ये आपके माइंड पर है कि आपको कौन चवल लगता है, कौन अच्छा लगता है। आई डेडिकेट टू दिस सॉन्ग्स एंड मेश अप टू ऑल कपल्स हु लिसन मी नाउ, सो स्टे ट्यून एंड यू आर लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड ऑल्सो दैब विद आरजे मौसम।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 एफएम एंड आल्सो डैब विदार जमोजम। और प्रोग्राम का अब इजाज़त लेने का टाइम करीब है, और कोशिश करूंगा कि आज आपकी सॉन्ग्स की जो फरमाइश थी वो पूरी की जाए। आज फरमाइश मैंने एक साथ ही सारे कपल्स की फरमाइश पूरी की, और साथ साथ आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो या मेरा वक्त पर आना ना आना बुरा लगा हो तो माजरत। असल में टाइम ही मैनेज करना इंसान को अगर राज है तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए। और कोशिश करिया करें कि आप टाइम को मैनेज किया करें, क्योंकि वक्त की कदर हमारे इधर यूके आकर ही आई, या पहले हम भी इसी तरह थे कि 9 बजे का टाइम है तो हम 9:15 पहुँचते थे। और कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को मैनेज करें। आप क्या करें, मजबूरी है, और सीनियर्स की भी बात माननी पड़ती है, उन्होंने आके सीट अपने पास रख ली थी तो हम भी फिर चुप करके बैठ गए थे, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ साथ आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, और किसी की फरमाइश थी कि अरेबिक सॉन्ग भी आप ऐड किया करें, और अरेबिक म्यूज़िक हमें पसंद है, हमें समझ तो नहीं आती और अरेबिक पर मुझे पसंद है। और ये थे यूके से, पर मुझे उनका नाम नहीं अब याद रहा, क्योंकि मैसेजेस बहुत से होते हैं, बहुत से नाम होते हैं, कोशिश करता हूँ कि नाम याद करूँ। जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनके तो नाम तकरीबन याद हो गए हैं, ये मुझे लगता है कि नए लिसनर्स थे, और नाम नाम नाम नाम नाम नाम थे तो नहीं याद मुझे। खैर, नाम का क्या लेना, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो डेडिकेट टू यू और आल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर यू अंडरस्टैंड अरेबिक, एंड आई आल्सो डेडिकेट टू यू। स्टार्टिंग से तो आपको पता लग गया होगा कि सॉन्ग कौन सा है, और सो एंजॉय द सॉन्ग एंड आई विल बी बैक आफ्टर द सॉन्ग।

वंस अगेन वेलकम बैक, और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड डैब। वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो या कोई ऐसी बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो तो आपको कहना चाहूँगा बड़ी प्यार से और अदब से माजरत। और अगर बात मेरी कोई अच्छी लगी हो तो आपके लिए भी अच्छा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है।

खैर आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं और इसके बाद इजाज़त चाहेंगे आपसे। और इस सॉन्ग्स के उस पार आएगी एक कमर्शियल ब्रेक और हमारा और आपका साथ इस सॉन्ग तक का था। और मैं कहता हूं कि अगर फिर एक बार कहता हूं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया और जिन्होंने अपने होने का एहसास दिया, जिन्होंने मैसेजेस पे जवाब दिए, जिन्होंने किसी की डेडिकेशन की। और मैं एक बार फिर उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करता हूं, अपने तमाम लिसनर को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया। सो गुड आफ्टरनून।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

Better. The radio station for people who love music.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्डन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।
8: सानू सजदा करन लई
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
9: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
10: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
9: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
10: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
9: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
10: थक गया सोनिए नी सुन के तेरे लारियां नू।
9: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
6: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
6: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
6: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
6: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H।
1: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: खुद
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा।
1: हम तेरे शहर में।
2: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM,

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: क्या आप जानते हैं मैं ठहरिए है जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सोनिए नी सुन के तेरे लारियां नू
1: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodpro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है ना दालें हैं ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।